0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 1:30.
2: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by the world famous qari Mishari Rashid Ali Farsi from Kuwait.
3: A'udhu billahi minash shaitanir

0: आजकल लोग सड़कों पर चलते फिरते चोरी के मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमरा और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें फरोख्त करते हैं। चोरी की चीज़ें खरीदने का मतलब आप इस चोरी में शामिल हैं। इसलिए चलते फिरते लोगों से चीज़ें हरगिज़ ना खरीदें, बल्कि ऐसे अफराद के बारे में पुलिस को आगाह करें। इंस्पायर FM कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: From the heart of Bedfordshire in Luton, this is Inspire FM. I have

0: एक्टिंग वगैरह, तो मैंने कहा मैंने बिस्मिल के एक दो एपिसोड देखे हैं, उसमें एक्टिंग कहाँ है, वो तो तेरी रियल लाइफ स्टोरी है तो यानी कि तेरा रोज़ का काम है वो। तो वो हंस रहे थे आगे से, मैंने कहा उसमें एक्टिंग की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, उसमें तो सीधी सीधी बातें। और फिर ये वाली बात की जो उन्होंने पूछा ना, लेडीज़ जो हैं, देखें जब तक आप रियलिटी को ना रियलिटी की आंखों में नहीं देखेंगी, जब तक ये डिसकनेक्शन रहेगा रियलिटी से, जब तक बेसिक नीड्स जिस इंसान को आप जानते हैं उनके बारे में बस सिर्फ ये कह देना कि औरतें तो सारी ऐसी होती हैं या मर्द तो ऐसे ही होते हैं, ये तो मैंने तो आज तक कई ऐसी औरतें देखी हैं जो कि टोटली आप उनको एक पिजन होल में नहीं बंद कर सकते, वो टोटली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स हैं। मर्द भी मैंने ऐसे देखे हैं जो टोटली डिफरेंट हैं। तो कोई भी स्टेरियोटाइपिंग जो है ना वो आजकल के ज़माने में और वैसे भी नहीं होती। मैंने कई ऐसी औरतें देखी जो मर्दों से ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग हैं और इतने बड़े बड़े काम और अपने घर संभालती हैं, सिंगल मदर्स हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो डेडिकेट करती हैं और इतने काम करती हैं और साथ यू नो सोसाइटी की फजूल बातें वगैरह भी सहती हैं। ऐसे मैंने मर्द भी देखे हैं जो अपेरेंटली बड़े स्ट्रांग हैं लेकिन यू नो अंदर से उनको हम बाजियों के नाम से बुलाते हैं और उनको बोला और पुकारा जाएगा हमारी ज़िंदगी में हमेशा से। तो इस किस्म के भी लोग होते हैं, लेकिन जब तक आप रियलिटी में जाकर, आपने अगर एक रिश्ता रखना है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उस बंदे की एब्सोल्यूट डूज़ या डोंट्स कौन से हैं, जब तक हम ये नहीं करना चाहते, आप अपनी तरफ से अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जो भी करना चाहें या कहें जी रिलीजन में ऐसे होता है, इस्लाम को अगर आप यूज़ करेंगे तो वो जितने लोगों को मैंने आज तक वैसे इस्लाम की बात करते देखा है ना, उन लोगों ने जो क्वालिफिकेशन है ना उन तमाम चीज़ों को क्वालिफाई किए बगैर आखिर में अपने फ़ायदे के लिए उनको इस्लाम चाहिए होता है जहाँ पर उनका केस जो है ना वो मज़बूत उन्होंने करना होता है। तो इन सारे मसाइल का तो कोई हल नहीं है और इंशाल्लाह इसी तरह लोग तकलीफ़ में रहेंगे और इसी तरह इस दुनिया से इंशाल्लाह उठेंगे हम। इंशाल्लाह क्यों, क्योंकि ये रब की मशीयत है, इसमें मर्जी है और हम ख़ुद कुछ चीज़ों जो हमने काम करना है ये मामलात के काम है। आपकी शादी को अच्छा चलाना या ना चलाना, उसमें जलील और रुस्वा होना या बहुत अच्छे तरीके से उसको डील करना, उसमें बंदे की जो सिलेक्शन है या बंदी की जो सिलेक्शन है उसमें रब ने आपको क्राइटेरिया दिया हुआ, छूट दिया हुआ, वो आप करते नहीं हैं गलत रीज़न्स की वजह से, कभी सोसाइटी की वजह से, कभी उम्र जा रही है की वजह से, कभी सब की हो गई है इस वजह से, कभी यू नो मोहब्बत हो गई है के नाम पे, कभी उन्होंने मुझे ऐसा फील करा दिया के नाम से। इस तरह अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो इसका वही एंड रिजल्ट होगा यू नो जो आपको पता है। सो ये सारी चीज़ें, और दूसरी तरफ भाई साहब भी सारे के सारे इसी तरह की हरकतें करते हैं, तो जाहिर बात है एंड में यही सब कुछ होना है जो हो रहा है हमारे साथ। तो यू नो क्या किया जा सकता है, इसके बारे में शायर कहता है कि होर चुपो गन्ने, इनका मतलब है सक मोर शुगर केन्स। फिर कहते हैं जी हमें टाइप टू डायबिटीज हो गई है। जी
1: आजादल आप मुझसे बात करें कि
0: नहीं, मैं तो दुनिया से बात करता हूँ ना, पगला मैं पगला हूँ आपको पता नहीं है, मैं किसी ने घर वालों ने कहा था ये तो पगला सा है क्यों हंस क्यों रही है, सवाल पूछा आपने, जवाब दे दिया आपको।
1: आजादल आपने दो कॉल्स ली है तो मुझे समझ नहीं आई थी क्या मुझसे बात करें,
0: वो फिल्म थी, हमारी फिल्म का नाम होना चाहिए मैं तो पगला हूँ वो क्योंकि वो कहना था दिल तो पागल है, यकीन करें हराम हो मेरा दिल पगला या दीवाना हो, मेरा मैं बिल्कुल ठीक, मेरा दिल बिल्कुल काबू में है और मैं खुद पगला हूँ, ये कैसे, या फिर मैं पगला गया हूँ।
1: अच्छा मुझे आपसे ये पूछना था कि क्या शादी आपकी फ्री विल को महदूद कर देती है,
0: शादी आपकी फ्री विल को महदूद कर दी। आपने ना जो इस सवाल को थोड़ा सा खोलें जरा, क्योंकि इसको इसके पे 6 शोज कर दूंगा मैं, तो मुझे सिर्फ क्वेश्चन का आपके आंसर देना है, शादी आपके फ्री विल को महदूद कर देती है, क्या मतलब?
1: नहीं आजाद साहब ये नहीं, मेरा मतलब ये क्या शादी आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी होती है, जो आपकी फ्री विल होती है, तो उसको क्या अफेक्ट करती है ये?
0: देखें शादी शुरू ही फ्री विल से होनी चाहिए, यानी कि आप अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश से एक बंदे को चूज़ करते हैं कि वो इस काबिल है कि वो आपका पार्टनर बने, तो ये फ्री विल से ही शुरू हुई है। इसके बाद आगे क्योंकि आप दो बंदों ने मिलके एक फैमिली बनानी है, एक बहुत रिस्पॉन्सिबल काम करना है और इनका एक एम है जो खुशी भी हो सकती है, जो प्रोग्रेस भी हो सकती है, जो बच्चों के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट भी हो सकता है, तो उसके बीच में जो आपकी जो भी फ्री विल्स हैं वो एक मिशन के ताबे होती हैं, यानी आपके जो एनर्जीज हैं, जैसे आपने गोल ज़िंदगी का सिलेक्ट कर लिया तो आपके पास जो भी टाइम एनर्जी रिसोर्सेज होती हैं वो तमाम आप कन्वर्ज करते हैं एक पॉइंट के ऊपर, तो इसमें आपकी फ्री विल से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो आपका यहाँ पे अगर

0: surgery on an unborn baby to successfully correct a birth defect while he was still inside the womb. His mother, Macy Savage from London, was operated on by doctors in the US while she was 26 weeks pregnant. Baby Theo, who is now 5 months old and thriving, had gastroschisis, where the belly button does not develop properly, causing the intestines to grow externally. Doctors partially exposed his mother's womb and then gently pushed his organs back into his abdomen using keyhole surgery. He was the third baby in the world to benefit from the first of its kind clinical trial. Amber and yellow heat health alerts come into effect across much of England on Monday, with temperatures expected to reach 34 degrees Celsius in some areas. The amber alerts issued by the UK Health Security Agency cover London, the South East and the East of England and the East Midlands from 9 o'clock until the same time on Wednesday, 5th of August. The alerts warn that significant impacts are likely across health and social care services due to the high temperatures, including a rise in deaths, particularly among vulnerable people. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu News with Mukarram Abbas.
1: इंस्पायर FM की उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मुकर्रम अब्बास। सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। अमरीकी सेंटकॉम ने यूएई के साथ मिलकर पहली दफ़ा एआई और दिगर शोबों में काम करने के लिए टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान किया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि ईरान पहले ही रशिया को हथियार फ्राहम करके इस जंग में शामिल हो चुका है। सीरिया के प्रेसिडेंट ने इंकशाफ किया है कि शाम इसराइल के साथ एक सिक्योरिटी मुआहदे के लिए कई मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने गजा के मखसूस इलाकों में इंटरनेशनल फोर्सेस को दाखिले की इजाज़त दे दी है। मेट पुलिस का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी में की गई इन्वेस्टमेंट के मस्बत नतीजे सामने आ रहे हैं और एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि ब्रिटिश अवाम की अक्सरियत जहनी दबाव और परेशानी से दोचार है। और अब इन खबरों की तफसील। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ईरान पहले ही रशिया को हथियार फराहम करके यूक्रेन के खिलाफ जंग में शामिल हो चुका है। मुमकिना नए खतरात के लिए मोहतात रहना ज़रूरी है। ईरान और नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में हिस्सा लेकर हमारी सालमियत को मजीद खतरे में डाल दिया है। ईरान ने रशिया को ड्रोन्स की बड़ी खेप फराहम करके उसे दिफाई लिहाज से मजीद मुस्तहकम किया। शाम के प्रेसिडेंट अहमद शरा ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का इंकशाफ किया है कि शाम इसराइल के साथ एक सिक्योरिटी मुआहदा तय करने के लिए कई मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसराइल के साथ सिक्योरिटी मुआहदा जाम अमन की राह हमवार कर सकता है। इंटरव्यू में अहमद शरा ने इस बात की भी तस्दीक की कि शाम का अपने हमसाया मुल्क लिबनान में किसी फौजी मुदाखलत का कोई इरादा नहीं। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने यूएई के साथ मिलकर पहली दो तरफा मस्नूई जहानत एआई टास्क फोर्स के क्याम का ऐलान किया है, जिसका मकसद दिफाई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग देना है। सेंटकॉम के मुताबिक मुआहदा तय पाने के बाद एआई टास्क फोर्स आइंदा चंद हफ्तों में बाकायदा काम का आगाज करेगी। इस टास्क फोर्स में अमरीका और यूएई के 20 माहरीन शामिल होंगे जो मुश्तरका मंसूबों पर मिलकर काम करेंगे। मेट पुलिस का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी में की गई इन्वेस्टमेंट के मस्बत नतायज सामने आ रहे हैं। ड्रोन्स और ताकतवर ई बाइक्स की मदद से हर माह तकरीबन 1000 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि लंदन के कई इलाकों में जराइम की शरह में नुमाया कमी वाक़ हुई है। दूसरी जनब लंदन के मेयर सर सादिक खान ने कहा है कि वेस्ट एंड में गश्त करने वाले पुलिस अफसरान की तादाद दुगनी करने से जराइम की शरह निस्फ रह गई है। उन्होंने बताया कि सिटी हॉल की माली मुआवनत से कायम किया गया नया वेस्ट एंड कमांड सेल भी जराइम की रोकथाम में मरकजी किरदार अदा कर रहा है। इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने गजा के मखसूस इलाकों में इंटरनेशनल फोर्स को दाखिले की इजाज़त दे दी है। इस मिशन को इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का नाम दिया गया है, जिसमें तकरीबन 200 अहलकार शामिल होंगे जो युगांडा और मराकश जैसे दोस्त मुल्कों से आएंगे। इस वक्त इसराइल गजा के तकरीबन 64% इलाके पर कंट्रोल रखता है, जबकि तकरीबन 20 लाख अफराद महदूद हिस्से में हमास के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में खेमों या तबाहशुदा इमारतों में इंतहाई बुरी ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं।

0: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
1: Allah. Bakhshish teri aankhon ki taraf dekh rahi hai. Mohsen tere darbar mein chup chap khada hai. Main Rozgul Bazminat ke saath aapki khidmat mein hazir hota hoon. Har Jumatul Mubarak आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी आवाज में अहमद या नात दूसरों की समातों की नजर कर सकते हैं तो सुनते रहिए इंस्पायर एफएम 105.1
2: एवरी फ्राइडे एट 11 एएम
3: फ्रॉम द स्टूडियोस ऑफ इंस्पायर एफएम द टाइम इज नाउ 4 o'clock.
4: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing an English talk by Noman Ali Khan called Examples from the Quran.
5: A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت

Once again, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aaj hum kuch mazeed sessions karne ki koshish karenge jisme ek do section aur I think mukammal ho jayenge. Abhi hum baat kar rahe hain tarteeb ke upar, sequence ke upar. Aur isko samajhne ke liye pehle main aasan si misal de dun aapko ki hum jab ek dusre se baat karte hain तो कभी कभार हमें एक दो या तीन चीज़ों का ज़िक्र करना पड़ता है, जैसे खाना भी ले आना और गैस भी भर देना, और ये भी ये एक दो चीज़ की लिस्ट होती है आपके जुमले में ना, तो उस लिस्ट में एक पहली चीज़, फिर एक दूसरी चीज़, फिर एक तीसरी चीज़, जैसे मैंने दिन रात काम किया या मैंने रात दिन काम किया, पहले दिन फिर रात या पहले रात फिर दिन. जब इंसान इसे बात करता है तो उसके जहन में नहीं रहता उसने पहले क्या कहा था, बाद में क्या कहा था. अगर मैं आपसे 5 मिनट बाद पूछूं आपने दिन रात कहा था या रात दिन कहा था, आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि हमें इसका इतना शौरी एहसास नहीं होता कि इसको भी बड़ा सोच के कहना चाहिए कि दिन पहले कहें या रात पहले कहें, सुनना पहले कहें या देखना पहले कहें. इसमें गैर शौरी सी बात होती है, जो जहन में आता है हम कह देते हैं. ठीक है, कुरान ने कई मकामात पर एक सीक्वेंस का, यानी चीज़ों की तरतीब दी है आयात के अंदर, और उनमें भी कुछ अजीब ऑब्जर्वेशंस हैं. अब उसका मुलाहिजा करें तो आपको कुछ चीज़ें बड़ी खूबसूरत सामने आएंगी. ये बहुत आसान मिसाल है. इसमें अल्लाह ताला ने कहा है वَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, जब हमने अम्बिया से उनके मीथाक लिए, यानी उनसे पक्का वादा लिया. तो यहाँ पर कहा है وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. आपको नाम तो समझ में आ गए होंगे, किन अंबिया के नाम हैं, नूह अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, फिर ईसा अलैहिस्सलाम. तो ये तारीखी तरतीब है, नहीं, सबसे कदीम इनमें से नूह, उसके बाद तारीखी एतबार से इब्राहिम, उसके बाद तारीखी एतबार से मूसा, और फिर आखिर में सबसे करीब रसूल के अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम. लेकिन इस तरतीब को तोड़ के अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह का जिक्र पहले किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْكَ, और आपसे, आपकी तरफ, आपसे किसकी तरफ इशारा है, रसूल की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर बाकी तारीख के शुरू में ले गए बात को. तो बात आपसे शुरू की और फिर तारीख, अगर वाकई तारीखी तरतीब कब लिहाज करना होता तो मिनका कहाँ पर आता, आखिर में आता. तो होता وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَمِنْكَ. तो ये असल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला रुतबे का लिहाज किया गया है कि उनका जिक्र मुकद्दम किया गया है इन तमाम अम्बिया से पहले. और इसमें एक और हिकमत भी है, और कई हिकमतें, उसमें से एक हिकमत ये याद रख लें कि जो तमाम अंबिया है ना, उन तमाम के पैगाम का निचोड़ रसूल को दिया गया है अलैहिस्सलाम. यानी अगर आपने इनको समझ लिया, रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने नूह को भी समझ लिया, इब्राहिम को भी समझ लिया, मूसा को भी समझ लिया, ईसा इब्ने मरियम को भी समझ लिया, उन चारों को समझ लिया. तो ये है एक उनका ख़ास रुतबा और ख़ास मकाम, जो सिर्फ मिनका की तरतीब से इस बात को सामने लाया गया है. इससे पहले इससे भी मज़ीद आसान मिसाल है, वमन युति अल्लाह व रसूल फ़ाउलाइक मअल लदीना अनअम अल्लाह अलैहिम मिनन नबियीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन. बहुत मशहूर आयत है. इस आयत को सूरह फातिहा की सिरात लदीना अनअमत अलैहिम की तफसीर समझा जाता है. कुरान के कवायद में से एक उसका कायदा यह है कि कुरान अपनी बात खुद ही एक्सप्लेन करता है, अपनी बात खुद ही समझाता है. कोई बात इख्तिसार से कहीं एक जगह पे कह देंगे अल्लाह ताला, और बाद में किसी और जगह पर उसी बात को खोल देंगे. फातिहा में कहा था जिन पर इनाम किया, अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो कौन है जिन पर इनाम किया, यहाँ वो बात वाज़ह कर दी. तो यहाँ पर चार ग्रोहों का जिक्र है, नबीयीन, और ये उर्दू में भी अल्फाज हैं तो इनके तर्जुमे की भी ज़रूरत नहीं है, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन. सिद्दीक के मामले, सिद्दीक का लफ्ज़ जिसको सीगतुल मुबालगा कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सच को थामे रखने वाला, सिर्फ सच्चा ही नहीं, हर हाल में सच को पकड़े रखे वाला, रखने वाला, उसको सिद्दीक कहते हैं. जो सच्चा हो उसको सादिक कहते हैं, जो हमेशा सच्चा हो उसको सदीक कहते हैं,
उसको सच्चा दोस्त, सच्चे दोस्त को भी सदीक कहते हैं, लेकिन सिद्दीक कहते हैं, ये सीगतुल मुबालगा है, बहुत ही ज्यादा हर हाल में जो कुछ भी हो जाए सच को थामे रखे, सच का हाथ कदामन ना छोड़े, उसको सिद्दीक कहा जाता है। यहां पर आम सी आसान सी बात है कि यहां रुतबे की बात हो रही है, सबसे आला रुतबा नबीयीन का, उसके बाद उसके अगले दर्जे में सिद्दीकीन, जिन्होंने उनकी बात को सच माना, जो मुश्किल भी आए इस सच को नहीं छोड़ना, जो भी तकलीफ आए, जो भी लोग कहें, फैमिली जो भी कह दे, सोसाइटी दुश्मन हो जाए, हमने नबिया का साथ नहीं छोड़ना, उनकी वफा नहीं छोड़नी, वो सिद्दीकीन हुए। और उसके बाद जो लोग मारे गए अल्लाह ताला की राह में, शुहदा हुए, वो शुहदा, और फिर आखिर में वो सालिहीन, और तमाम अच्छे लोग जिन्होंने अच्छे काम किए, जिन्होंने अपने आप को दुरुस्त किया, वो सालिहीन। लेकिन इसमें एक अजीब लतीफ़ बात यह भी है कि यहाँ पर कम से ज़्यादा की तरफ तरतीब जा रही है, सबसे कम तादाद इन चारों में से नबीयीन की है, और उससे थोड़ी ज़्यादा तादाद किसकी है, सिद्दीकीन की, और उससे ज़्यादा तादाद किन की है, शुहदा की, और सबसे ज़्यादा तादाद किन की है, सालिहीन की। और बड़ी खूबसूरत चीज़ यह है कि जो आखिर में कहा ना, वह हसुना उलाइका रफीका, और क्या खूबसूरत हैं ये लोग रफीक के नाते, कैसे ज़बरदस्त रफीक हैं ये, कितने खूबसूरत रफीक हैं। रफीक का लफ्ज़ अरबी में रिफ्क से आता है, रिफ्क, रिफ्क कहते हैं टेक लगाकर आराम करने को, नरमी टेक, अगर कोई बहुत ही आरामदेह सोफ़ा है तो उसको मिरफक कहा जाता है, मिरफका, मुर्तफक, ऐसी जगह जहां आप बैठें जहां मैट्रेस ज़रा बहुत ही सॉफ्ट हो और पीछे आप आराम से टेक लगा लो, ऐसा दोस्त जिसकी कंपनी में आप रिलैक्स हो जाओ। कुछ लोग होते हैं जो मेहमान होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी होती है और आप ज़रा अपने आप को ज़रा संभाल के इंसान बन के रहते हो। कुछ दोस्त होते हैं जिनके साथ आप पूरी तरह रिलैक्स हो जाते हो, हंसी मजाक, इनफॉर्मेलिटी, वो कैसा दोस्त है, उसका उस दोस्त का क्या नाम है, रफीक, रफीक। अजीब बात है इस आयत में कि अल्लाह ताला ने जन्नत के वादों में से एक वादा ये किया है कि ये तमाम चार ग्रोह एक दूसरे के साथ कैसे होंगे, रफीक, और हमें उनके साथ रफीक होने का मौका मिलेगा। समझ नहीं आती बात, क्योंकि हम

0: ये कुछ के हाँ इमाम शाफी के हाँ और कुछ और के हाँ ये सजदे की आयत है, एहतियातन हम नमाज की ब्रेक में या अगली ब्रेक में आप लोग सजदा कर लेना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल ख़ैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। रुकू करो अहले ईमान, रुकू करो, सजदा करो, अल्लाह की इबादत अपने रब की इबादत करो और अच्छे काम करो। चार चीज़ें कही हैं, रुकू, फिर सजदा, फिर अल्लाह की इबादत और फिर अच्छे काम। ये भी एक बड़ी फलसफी तरतीब है। रुकू जब आप आंखों से देखते हो रुकू तो इंसान आधा झुक गया है, जब आप सजदा देखते हो तो वो पूरा झुक गया है, यही बात है ना। तो एक तरह से एक तरतीब है कि अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है कि अपने अल्लाह ताला के सामने जब हम अपने आप को पेश करते हैं तो उसमें भी मराहिल होते हैं, यानी इंसान 100% एकदम से नहीं पहुंच जाता, उसको लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, तुम एक मरहले से दूसरे मरहले की तरफ जाओगे। तो नमाज में भी वो मराहिल सिखा दिए, पहले इंसान खड़ा है, फिर आधा झुका, फिर पूरा झुका। और इसी तरह हम जब अल्लाह ताला की इताअत की तरफ आते हैं तो इसमें स्टेजेस होती हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इताअत की तरफ आते हैं। और ये यही दर्स नमाज की हरकात में से बहुत सारे दुरूस में से एक दर्स ये भी है। तो ये तो आ गया इरकाउ वस्जुदु, लेकिन हम अगर रुकू और सजदे को मिलाएं तो यही तो असल इबादत है नमाज। लेकिन फिर उसके बाद किस चीज़ का जिक्र किया, वअबुदू रब्बकुम, लेकिन पहली दो बातें तो पहले ही इबादत थी, तो फिर इसके बाद इबादत का जिक्र करने की क्या हिकमत हो सकती है। उसके बहुत सारे जवाहिर में से एक छोटा सा मोती ये है कि यहाँ पर अल्लाह कह रहे हैं कि अब जो तुमने सबसे आला इबादत कर ली ना, अब तुम बाकी जिंदगी में मेरी इबादत के लिए तैयार हो, अब इबादत शुरू होगी। रुकू और सजदा असल इबादत के लिए तुम्हें तैयार कर रहा है, यानी नमाज का टाइम हुआ, जोहर का टाइम हुआ, जाके मैंने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद मैं वापस ऑफिस के काम पे लग गया, ऑफिस के काम पे किसी की गीबत हो रही है, ऑफिस के काम पे को कह रहा है जी आप बस ये कह दें कि डेडलाइन परसों है, हम सबको पता है आज है, लेकिन आप डेट चेंज कर दें मेरे लिए प्लीज़, अब बस भेज दें, खैर है। कोई किसी की कॉल आ रही है, उनको बता दूं मैं ऑफिस में नहीं हूं, वो कह रहे हैं कि वो ऑफिस में नहीं है। ये क्या है, ये अल्लाह ताला से इबादत नहीं है। इबादत का मकसद है कि जो हिदायत, जैसे नमाज में अल्लाह ने हिदायत दी है खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते हैं, अल्लाह ताला हिदायत देते हैं रुकू में जाओ, रुकू में जाते हैं, अल्लाह कहते हैं पूरे गिर जाओ, पूरे गिर जाते हैं, जब खड़े होने का वक्त तो खड़े होने का वक्त, हर हरकत को कंट्रोल किया जा रहा है, आंखें कहाँ जानी है उनको कंट्रोल किया जा रहा है, सलाम किस तरफ करना है, पहले किधर करना है, पहले किधर करना है कंट्रोल किया जा रहा है, आपके अल्फाज को कंट्रोल किया जा रहा है, यानी आप मुजाहरा करते हैं कि अल्लाह जो जो इंस्ट्रक्शन जो हुक्म मुझे देगा 100% मैं उस पर अमल करूंगा, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे मैं करूंगा, मैं पूरी तरह अल्लाह ताला की इताअत करने के लायक हूं, मैं उसकी सलाहियत रखता हूं। और सब इकट्ठे वो हम करते हैं जमात से, यानी हम में से किसी में फर्क नहीं है, जो अल्लाह कह रहा है वो हम एग्जैक्टली कर रहे हैं, अपने जिस्म को हम सरेंडर कर देते हैं। आपको कॉल आ रही है उसके दरमियान, आपको आपका बॉस बुला रहा है, आपको कोई आपका फेवरेट मैच लगा हुआ है, आप खड़े हुए हो नमाज में, कोई आउट हो गया तो आप ये नहीं कहते ओए ओ यार अल्लाह अकबर, नहीं करता कोई भी, आप खड़े रहते हो नमाज में, आपकी ट्रेनिंग ऐसी है। तो नमाज क्या सिखा रही है कि अल्लाह ताला की जब इताअत होती है तो वो मुकम्मल होती है। अब जिंदगी में क्या होता है, कुछ मामलात में अल्लाह आपको कुछ ज्यादा छुट्टी देता है, आप खड़े हो, कुछ मामलात में अल्लाह ने ज्यादा मुतालबा किया है जैसे क्या है रुकू, कुछ मामलात में अल्लाह ने बहुत ज्यादा मुतालबा किया है जैसे सजदा, आंखें कुछ अब सजदा करता है ना इंसान, लेकिन जब इंसान क़याम में खड़ा होता है ना तो अल्लाह ने हमारी आंखें ऐसी नहीं बनाई कि अगर आपने जायनमाज बिछाई हुई है तो आपको सिर्फ ये मुरब्बा नजर आ रहा है, अगर कोई बच्चा भागता हुआ जाएगा तो आपको वो भी नजर आ जाएगा, ऐसी बात है ना। लेकिन जब आप रुकू करेंगे तो आपके आपके नज़र के दायरे में कमी हुई कि नहीं, कमी आ गई ना, जब सजदे में गए तो नज़र कहाँ तक जाती है, बिल्कुल नहीं जाती, बिल्कुल आपका दायरा बंद हो जाता है। कुछ मामलात में औरों का अमल दखल है हमारी इबादत में और हमारी इताअत में, और लोग भी शामिल आ जाते हैं, लेकिन आपको उसको बर्दाश्त करके फोकस करना पड़ेगा। कुछ मामलात ज़्यादा ज़्यादा फोकस, और कुछ मामलात में किसी का कोई अमल दखल नहीं, वो बस आप खुद करो। उसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं अल्लाह ताला के लिए पढ़ा रहा हूँ तो ये इबादत है कि नहीं, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग कुछ सीख रहे हो, ये भी इबादत है कि नहीं, लेकिन इस इबादत में एक सोशल एलिमेंट भी है, हंसी मजाक भी है, हम एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, कोई तारीफ भी कर दे, कोई फोटोज भी खींच ले, कुछ और भी कर ले, ये है कि नहीं? तो इसमें हमारे फोकस में इधर उधर बात हो सकती है कि नहीं? हो तो सकती है ना। तो इस फोकस के इधर उधर होने के बावजूद इंसान अपने आप को सीधा रखे, ठीक है, वो डिस्ट्रैक्शन आती हैं, लेकिन इंसान अपने आप को दोबारा फोकस पर लाता रहे, यही बात है ना। इसके मुकाबले में अगर जब हम नमाज पढ़ते हैं या किरात करते हैं कुरान की घर में बैठे हुए, या तहज्जुद पढ़ते हैं, तो उसमें किसी और का अमल दखल है? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला हमें तैयार कर रहा है कि हर तरह की सूरत हाल का हमें सामना करना है। अगर अल्लाह ताला चाहते ना कि हम दुनिया को छोड़ के बस अल्लाह की इबादत करें, तो शायद जिस तरह बुद्धिस्ट होते हैं या हिंदू होते हैं या और मजाहब होते हैं, जो आंखें बंद करके पहाड़ पे कहीं जाके बाकी सबसे दूर होके 6-6 घंटे बैठे रहते हैं ताकि वो कॉन्सेंट्रेट कर सकें। लोगों ने तो मुझसे आके ये भी पूछा है कि नमाज में आंखें बंद करके नमाज पढ़ने तो ज़रा कॉन्सेंट्रेशन आसान नहीं हो जाएगी, क्योंकि जब आंखें खोल के नमाज पढ़ते हैं तो आपका छोटा बच्चा है वो नीचे से आके आप कहते हैं आप नमाज पढ़ रहे हो, जिसे आपको घूर रहे हैं आप नमाज, और ये ऐसा नहीं कर सकते कहीं किसी दूर कोने में किसी पहाड़ी पर जाके कहीं जाके, या अगर अल्लाह अगर आप इजाज़त दे दो मैं गाड़ी में जाके दरवाजे बंद करके सारे गाड़ी के फिर मैं नमाज पढ़ा करूं, या नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स लगा के मैं नमाज पढ़ा करूं तब बाकी बाहर की आवाज़ ना। अल्लाह ताला ने हमें नमाज का हुक्म दिया, कोई मछेरा था उसने किश्ती पर खड़े होकर नमाज पढ़नी है, कोई किसान है उसने खेत में खड़े होकर नमाज पढ़नी है, कोई मजदूर है उसने मजदूरी में नमाज, कोई जंग के मैदान में उसने जंग के मैदान में नमाज पढ़नी है। यानी नमाज का जो ये सिलसिला है वो दुनिया को छोड़ के है कि दुनिया के साथ ही चल रहा है? दुनिया के साथ। मैं जब मैं न्यूयॉर्क में होता था, न्यूयॉर्क में क्योंकि रियल इस्टेट बहुत महंगी है, तो वहाँ पर जो रेस्टोरेंट खोलना हो गया न्यूयॉर्क सिटी में तो वो तो ख्वाबों की बात है, बहुत ही महंगा है। तो वहाँ पर उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स बनाए हुए, वो ठेला लेके वो चलते हैं, उनको लाइसेंस मिलता है कि इस सड़क के इस कोने पे आपके पास लाइसेंस है, यहाँ पे आप बेच सकते हो। वो बहुत सारे हलाल वेंडर्स बने हुए हैं जगह जगह, हलाल हॉट डॉग्स, हलाल चिकन एंड राइस वगैरह वगैरह। तो वो सड़क पे लाखों की लोग में लोग गुजर रहे हैं, लोग उससे ख़रीद रहे हैं। तो नमाज का टाइम आता है तो वो क्या करता है बेचने वाला, वहीं पे उसने फुटपाथ पे जायनमाज लगाई, आगे गैस की टंकी रखी, वहीं वो खड़ा नमाज पढ़ रहा है टाइम स्क्वायर के दरमियान में, इधर से उधर लोग गुजर रहे हैं और वो वहाँ खड़ा नमाज पढ़ रहा है। अब शोर है, शोर तो है, गाना बजाना है बिल्कुल है, गाड़ियों की आवाज़ है बिल्कुल है, लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कोई बेहूदा बातें भी कर रहे हैं, वो सब कुछ है, लेकिन वो नमाज पढ़ रहा है, लोग ट्रेन स्टेशन में नमाज पढ़ रहे हैं। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि हमें इस दुनिया का सामना करना है और फिर भी इबादत करनी है, ये ट्रेनिंग दी जा रही है हमें। तो जब ये कहा है ना वअबुदु रब्बकुम, अपने रब को मद्देनजर रखो उसकी इबादत करो, ठीक है दुनिया का तो तुम्हें सामना करना ही है। तो ये ज़हनियत अल्लाह ताला ने हमारे दिलों से हमारे दिमाग से निकाल दी कि नहीं जी मुझे दुनिया से हट के मुझे दीन की खिदमत करनी है। ओ इंसान, हमारा दीन क्या है कि हम दुनिया का सामना करते हैं और दुनिया का सामना करते हुए हम दीन की खिदमत करते हैं, दुनिया से भाग के नहीं, दुनिया से हट के नहीं, दुनिया में रहते हुए दुनिया को एंगेज करते हुए। ये दीन तिजारत में गया, ये दीन सफ़र में लेके हम जाते हैं, ये दीन हम हर दुनिया के हर शोबे में हम इस दीन को साथ लेके जाते हैं, हम दुनिया के शोबों से भागते नहीं, उनको फेस करते हैं। लेकिन ये सब है कमिटमेंट हमारी अल्लाह ताला के साथ। उसके बाद एक आखिरी तरतीब में डाला वफ़ालुल खैर, और खैर किया करो, अल खैर करो। तो सवाल पैदा होता है कि पहले कहा था रुकू करो, वो खैर नहीं है? फिर कहा था सजदा करो, वो भी तो खैर है? फिर कहा था इबादत करो अपने रब की, वो भी तो खैर है? और अब क्या क्या कह रहे हैं, और अल खैर करो, खैर अल खैर करो। तो इससे मुराद ये है कि इन सब के बाद एक और मरहला भी है, और वो है सबसे बेहतरीन करने का काम, सबसे बेहतर अल खैर। खैर अरबी में कहते हैं अच्छे काम को, अल खैर कहते हैं बेहतरीन काम को, शर कहते हैं बुरे काम को, अशर कहते हैं सबसे बदतरीन काम को। जिसी तरह अस्मा तफदील में होता है अहसन बेहतर है, और अल अहसन बेहतरीन है, अकबर ज्यादा बड़ा है, और अल अकबर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो यहां पर अल खैर से सबसे बेहतरीन काम करो, और सबसे बेहतरीन में बहुत सारे उलमा ने इस पर बहुत तदब्बुर किया कि ये क्या बात कही जा रही है, और उसमें बहुत सारी राह है, राय है जो एक राय मेरे दिल को लगती है औरों का मैं इनकार नहीं करता, वो ये भी है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला की इबादत और खिदमत खल्क दोनों को मिलाकर बेहतरीन, यानी दोनों तरफ, एक तरफ आप एक नज़र आपकी इंसानियत की भलाई की तरफ है, उसमें दावत का भी काम है, उसमें इंसान की इस्लाह का भी काम है, उसमें फलाह का भी काम है, रिलीफ का भी काम है, तामीर का भी काम है, वो सारी चीज़ें हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की इबादत भी है। अब ये सारी चीज़ें एक साथ हो गई तो एक क्लाइमैक्स तक आ गई ये बात, इरकाऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह तक पहुँच जाओ। वल्लज़ी खलक़कुम फ़मिनकुम काफ़िर वमिनकुम मुमिन, उसने तुम्हें बनाया और तुम में से काफिर भी हैं और तुम में से मोमिन भी हैं। और ये असल में एक दो हकीकतें हैं, दो मुतजाद हकीकतें हैं जो कुरान ने बयान की हैं। इंसान की असल है नूर, इंसान की असल है नूर, लेकिन इंसान की तारीख में असल ट्रेजेडी है कि अक्सरियत किस तरफ गई, कुफर की तरफ। इंसान की तारीख में हकीकत में, यानी सलाहियत एक और चीज़ होती है और जो हुआ हकीकत में वो और चीज़ होती है। जैसे कोई टीचर है क्लास में, उसके सामने बहुत ही बेहतरीन जहनीत के बच्चे हैं, बहुत स्मार्ट हैं, वो सारे फुल मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे आधे से ज़्यादा फेल होते हैं। वो फेल इसलिए नहीं होते कि उनका जहन नहीं है, इसलिए नहीं होते उनकी सलाहियत नहीं है, उनके अंदर कुव्वत इरादा नहीं थी, सीरियसनेस नहीं थी, मेहनत का जज्बा नहीं था, सुस्ती थी, दिल नहीं था। टैलेंट तो है लेकिन सुस्ती भी है साथ में, तो टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता जब सुस्ती हो साथ में। इसी तरह इंसानियत को सलाहियत तो दी गई हिदायत पर रहने की, हिदायत पर जीने की, लेकिन हमने इस मामले में सुस्ती दिखाई, कुव्वत इरादा नहीं दिखाई। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो अक्सरियत है उसका जिक्र पहले किया और कहा फ़मिनकुम काफिर वमिनकुम मुमिन। और ये हकीकत भी थी उस वक्त की कि जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, उसने तुम सबको बनाया, तो रसूल सल्लम की ऑडियंस में अक्सरियत किन की थी, कुफार की या अहले ईमान की? कुफार की। फ़मिनकुम काफिर वमिनकुम मुमिन, वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا, हमने किताब विरासत में दी उन लोगों को जिनको हमने खास चुना था हमारे बंदों में से। فمنهم ظالم لنفسه, तो जिन उम्मतों को चुना, जिन अहले ईमान को चुना, उनमें से भी बाद में, यानी मुसलमान होने के बाद भी ऐसे निकले जिन्होंने अपने साथ जुल्म किया। ظالم لنفسه, यानी मुसलमान होने के बावजूद गुनाहगार होना, उनका पहले जिक्र। फिर कहा منهم مقتصد, और उनमें से जो वो है जो एतदाल की राह लेते हैं, दरमियानी राह। मुक्तसिद, मुक्तसिद इसको भी कहते हैं जो इरादे का पक्का हो, मुक्तसिद उसको भी कहते हैं जो अदल व इंसाफ करे। अब अंदाज़ा करें, गुनाह करने वाले ज़्यादा हैं या इंसाफ करने वाले ज़्यादा हैं? गुनाह करने वाले ज़्यादा, उससे कम कौन? इंसाफ करने वाले। और फिर आखिर में वमिन हम साबिकुम बिल खैरात, और उनमें से वो भी हैं जो खैर के अच्छे कामों में औरों से आके निकल जाते हैं, जो खुद ही से मोटिवेटेड होते हैं, जिनकी हम पहले बात कर रहे थे ना, मिनहुम साबिकुन बिल खैरात, वो सबसे कम तादाद में हैं। तो ज्यादा से कम की तरफ एक सीक्वेंस जा रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी थी। दो जुर्म हैं जिसमें अल्लाह ताला ने एक तरतीब, एक के लिए एक तरतीब, दूसरे के लिए उसकी मुतजाद तरतीब इस्तेमाल की है। चोर के बारे में कहा है कि मर्द चोर और औरत चोर, वसारिकु वसारिकतु फक्तअउ अयदीहुमा, उनका हाथ काटो, वसारिकु वसारिकतु, ठीक है। सूरतुन नूर में अल्लाह ताला ने जिना के बारे में कहा है वज़ानियतु वज़ानी, जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द। तो जब चोरी की बात की तो किसका जिक्र पहले है? मर्द का, फिर औरत का। और जब जिना की बात की तो किसका जिक्र पहले है? औरत का और फिर मर्द का। इस पर हमारे उलमा के बहुत सारे तबसरे थे, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं इसमें कोई रिसर्च भी करूं इन दो जुर्मों के बारे में। तो मेरी मुलाकात हुई एक दफ़ा एक क्रिमिनोलॉजिस्ट से, जो क्रिमिनल बिहेवियर को पढ़ते हैं, क्राइम को स्टडी करते हैं, जुर्म को स्टडी करते हैं, उसकी डेटा एनालिसिस करते हैं, उसकी स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो एक क्रिमिनोलॉजिस्ट थी, उन्होंने अमेरिका में क्राइम को पढ़ा था पिछले 70 साल, पिछले 70 साल का डेटा क्राइम का, कि मुख्तलिफ किस्म के क्राइम जैसे कार जैकिंग है या होम इन्वेजन है या किसी ने जो है वो पिक पॉकेटिंग है, किसी ने जो जेब कतराना होता है वो है, फिर प्रोस्टिट्यूशन है, इस तरह के जुर्म ना। तो वो एक सेमिनार में थी मेरे, वहाँ उनसे मुलाकात हुई थी, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था और जो अकवाल हैं उलमा के मैं वो शेयर कर रहा था। आज मैं उनकी बात आपसे शेयर करता हूँ। सेमिनार के पास वो मेरे पास आती हैं, मुझे अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ाती है यूनिवर्सिटी में, वो टेक्स्ट बुक खोल के उन्होंने मुझे दिखाई अमेरिकन क्राइम स्टेटिस्टिक्स की, और कहती हैं कि जो रॉबरी और स्टीलिंग, होम इन्वेजन, इस किस्म के स्टीलिंग वाले, चोरी वाले काम, उसमें 98% मर्द हैं, 98% मर्द हैं और 2% औरतें हैं। और उसमें भी लोगों ने बहुत एनालिसिस किया है ऐसा क्यों है, वो क्यों है, क्योंकि उसमें पकड़े जाने का रिस्क ज़्यादा है, फिजिकल हार्म का रिस्क ज़्यादा है, और मेन जो है वो फिजिकल रिस्क ज़्यादा लेते हैं। दूसरी तरफ प्रोस्टिट्यूशन से मुतालिक केसेस में 96-97% कौन है, फीमेल्स हैं जो अरेस्ट होती हैं, जिनको पकड़ा जाता है, वह ज़ानियत हो वह ज़ानी। हमारे उलमा कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मर्द को और औरत को दो मुख्तलिफ किस्म की ताकतें दी हैं, इंसान को, मर्द को फिजिकल ताकत दी है और औरत को जज्बाती ताकत दी है, वो साइकोलॉजिकली उसको पावर दी है, कंट्रोल करने की पावर दी है, सड्यूस करने की पावर दी है, अट्रैक्ट करने की पावर दी है। तो इन दोनों पावर्स का जो गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ज़्यादा सलाहियत है उसका वो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है। वैसे तो दोनों के पास दो तरह की सलाहियत हो सकती है, बट दिस इज़ अ स्टेटिस्टिकल रियालिटी। वसारिक वसारिकतु वज़ानियतु वज़ानी फजलिदु कुल्ल वाहिदिन मिन्हुमा मिया जल्दा। ओके,
1: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: Yahan par is misal ke liye aapko thoda zyada concentration ki zarurat hai. Lekin ye mere nazdeek ye is kisam ki misale hoti hain jo jab main pehle padh raha tha na to inse main sabse zyada jo mutasir hota tha in misalon se hota tha. ये कैसे मुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता।
2: الحديث السادس والثلاثون عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامه فيقولون لو استشفعنا الى ربنا فياتون ادم فيقولون انت ابو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحي ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحيي فيقول ائتوا خليل الرحمن فيأتونه فيقول لست هناكم ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحيي من ربه فيقول ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيأتونه فيقول لست هناكم ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتونني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي فأقع ساجدا مثله، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة، ثم أعود الرابعة، فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. رواه البخاري وكذلك مسلم والترمذي وابن ماجه، وفي رواية أخرى للبخاري زيادة هي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ضرة.
3: Hadith 36. On the authority of Anas, may Allah be pleased with him, from the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, who said, the believers will gather together on the day of resurrection and will say, should we not ask someone to intercede for us with our Lord? So they will come to Adam and will say, you are the father of mankind. Allah created you with His hand, and He made His angels bow down to you, and He taught you the names of everything. So intercede for us with your Lord, so that He may give us relief from this place where we are. And He will say, I am not in a position to do that. And He will mention His wrongdoing, and will feel ashamed, and will say, go to Noah, for he is the first messenger that Allah sent to the inhabitants of the earth. So they will come to him, and he will say, I am not in a position to do that. And he will mention his having requested something of his Lord about which he had no proper knowledge. And he will feel ashamed and will say, go to the friend of the merciful. So they will come to him and he will say, I am not in a position to do that. Go to Moses, a servant to whom Allah talked and to whom he gave the Torah. So they will come to him and he will say, I am not in a position to do that. And he will mention the taking of a life other than for a life. And he will feel ashamed in the sight of his Lord and will say, go to Jesus, Allah's servant and messenger, Allah's word and spirit. So they will come to him and he will say, I am not in a position to do that. Go to Muhammad, may the blessings and peace of Allah be upon him, a servant to whom Allah has forgiven all his wrongdoing, past and future. So they will come to me, and I shall set forth to ask permission to come to my Lord, and permission will be given. And when I shall see my Lord, I shall prostrate myself. He will leave me thus for such time as it pleases him. Then it will be said to me, raise your head, ask and it will be granted, speak and it will be heard, intercede and your intercession will be accepted. So I shall raise my head and praise him with a form of praise that he will teach me. Then I shall intercede and he will set me a limit as to the number of people. So I shall admit them into paradise. Then I shall return to him. And when I shall see my Lord, I shall bow down as before. Then I shall intercede and he will set me a limit as to the number of people. So I shall admit them into paradise. Then I shall return for a third time, then a fourth, and I shall say, there remains in hellfire only those whom the Quran has confined and who must be there for eternity. It was related by Al-Bukhari, also by Muslim, At-Tirmidhi and Ibn Majah. Another version by Al-Bukhari adds, the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, there shall come out of hellfire he who has said, there is no God but Allah, and who has in his heart goodness weighing a barley corn. Then there shall come out of hellfire he who has said, there is no God but Allah, and who has in his heart goodness weighing a grain of wheat. Then there shall come out of hellfire he who has said, there is no God but Allah, and who has in his heart goodness weighing an atom.
4: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
5: Does it matter if somebody wears hijab if they're committing all these other sins? A person may look at their life and see that they commit all these other sins, and they may say to themselves, does it really matter if I wear hijab or not? This is a trick from Shaitan. What Shaitan wants you to do is give up on this one good deed that you are doing. There is no doubt that wearing hijab is indeed very, very hard, and this is why Shaitan will usually attack from that door. He will constantly be on your back and he will remind you of how hard hijab is, or if you don't wear hijab, Shaitan will constantly come and remind you that it is indeed very, very hard and your life is going to change when you wear hijab, and that may be true, but remember, even just wearing hijab, and you may not do any other good deeds or you may commit a lot of other sins, but that wearing of that hijab is still a good deed and you are still in obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, so never ever give up on that hijab, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best.
6: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
7: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
8: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
9: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk.
10: होशियार रहें, कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है. वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं. इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे. इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज.